0: बच्ची के करियर की बागडोर ABCL संभाल रहे हैं, उनकी बातें वे जाने। हम तो इतना ही बताएंगे कि फिलहाल नंबर 23 पर हैं ABCL के नुमाइंदगी। एबी बेबी पिछले बार जो नंबर 20 पर था, इस बार नंबर 23 पर, यानी तीन घर नीचे उतरा है। कभी कभी दिल में ये ख्याल आते हैं,
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंग जो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका और अभी आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्त क्यों नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे किसी की सहारे की आरज़ू नहीं।

0: विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये जयपुर केंद्र है।
1: दोस्तों आज हमारा हौसला दोगुना है कि आज हम अपने प्रोग्राम की गोल्डन जुबली मनाने के बाद बढ़ रहे हैं।

0: अच्छा ने किया है
1: टाइम्स एफएम ये
2: राधे श्याम
0: अरे राधा ये किस फिल्म का गाना है
2: ये गाना नहीं है भाभी ये एक दुकान का नाम है जहाँ रंग बिरंगी हैदराबादी नेचुरल फ्रेश वाटर पर्ल्स की प्रदर्शनी लगी हुई है
0: तुम मुझे वहाँ ले चलोगी
2: क्यों नहीं जरूर और आपके लिए 10-25% की छूट भी है
3: Teens Today, the magazine for teenagers from India Today.